0: ఆకాశవాణి సమయం 6 గంటలకు వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రలే.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे. यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी. कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा. इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा. हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे. गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके. इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है. इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है. एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है. उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं. चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं. मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की. मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है. अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जिगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं. इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं. एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया. फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया. अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम और हैरी केन ने एक एक गोल किया. इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर

0: స్తుతిమాల క్రైస్తవ భక్తి గీతాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి సమయం 8 గంటలు. సమాచార ప్రభాత్, ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాథ్ మే లవ్లీ నిగమ్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे. वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे. विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है. अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले

0: कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन

0: में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
2: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के 1-1 गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की की लाइनें क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय

0: समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली NCR तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेंजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले, आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज

समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे

भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है।

अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया।

अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन

इन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है।
अब

भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो।

0: जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी प्रधानमंत्री गौरवनीयులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి చేసిన మన్ కీ బాత్ ప్రసంగానికి తెలుగు అనువాదం వింటారు.
3: ప్రియమైన దేశవాసులారా, నమస్కారం. మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో మరోసారి మీతో మాట్లాడడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. 2026 సంవత్సరంలో సగం గడిచిపోతోంది. ఈ 6 నెలల్లో మన్ కీ బాత్లో మన దేశ ప్రజలు సాధించిన ఎన్నో విజయాల గురించి మనం చర్చించుకున్నాం. జూన్ నెలలో కూడా మన దేశం కొన్ని మైలురాళ్లను సాధించింది. అవి ప్రతి పౌరుడికి గర్వకారణాలు. ఈ విజయాలు దేశభద్రత, స్వావలంబనకు సంబంధించినవి. కోల్కతాలో జరిగిన ఒక నావికాదళ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యే అవకాశం నాకు ఇటీవల లభించింది. అక్కడ ఐఎన్ఎస్ దూనాగిరి, ఐఎన్ఎస్ సంశోధక్, ఐఎన్ఎస్ అగ్రై నౌకల్ని భారత నావికాదళంలోకి చేర్చారు. ఈ నౌకల రూపకల్పన నుండి తయారీదాకా ప్రతి పని స్వదేశీయులే చేశారు. మిత్రులారా, దేశం విమానయాన రంగంలో ఒక పెద్ద విజయాన్ని జూన్ నెలలోనే సాధించింది.

0: aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही
0: such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और
0: लिंक टू द कंट्रीज सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस दिस मंथ. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that in the month of June, the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. This was developed jointly by DRDO laboratories and Indian industry partners. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold.
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई. इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है. भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा.
0: Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचे. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: The Prime Minister also spoke about the importance of the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. He said this scheme provides

0: मीडियम वेव 406.5 मीटर अर्थात 738 किलो हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम। सभी श्रोताओं को सुरभि जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हिंदी कार्यक्रम में प्रकाश किरण के अंतर्गत आइए सुनते हैं समाज सुधार, शिक्षा और सामाजिक समानता के महान प्रेरणा स्रोत छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन एवं उनके अतुलनीय योगदान पर आधारित विशेष प्रस्तुति। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं सुनील दत्त शर्मा।
1: छत्रपति साहू जी महाराज, इनके बचपन का नाम यशवंत राय था। यही यशवंत राव आगे चलकर साहू जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। साहू जी महाराज न केवल एक महान शासक थे बल्कि वे एक महान समाज सुधारक भी थे। यशवंत राव घाटके को कोल्हापुर के शाही परिवार ने गोद लिया और 1894 में वे छत्रपति बने। उनकी शिक्षा राजकोट के राजकुमार कॉलेज से हुई थी, जहाँ उन्होंने आधुनिक शिक्षा तथा प्रशासनिक ज्ञान प्राप्त किया। साहू जी महाराज सत्ता प्राप्त करते ही अपना जीवन जन कल्याण में लगा दिया। वे एक महान शासक तो थे ही, लेकिन एक महान समाज सुधारक भी थे। वे दूरदृष्टा थे। पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए सर्वप्रथम सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने का कार्य साहू जी महाराज ने ही किया था। वे जानते थे कि जब तक आर्थिक स्थिति से इन पिछड़े वर्ग को ऊपर नहीं उठाया जा सकता, तब तक उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अस्पृश्यता न केवल जातिगत भेदभाव था बल्कि एक सामाजिक रोग था। यह रोग कैंसर से भी अधिक घातक था। साहू जी महाराज उनकी मानसिक पीड़ा को महसूस करते थे। उन्हें बराबरी का अधिकार देना साहू जी महाराज अपना कर्तव्य समझते थे। साहू जी महाराज ने दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर, कुओं, तालाबों, मंदिरों जैसे स्थानों पर बराबरी का अधिकार दिलवाया। साहू जी महाराज इस बात को जानते थे कि अशिक्षा का अंधकार ही अज्ञानता का कारण है। सामाजिक अंधकार को मिटाने के लिए शिक्षा का दीपक जलाना आवश्यक होता है। इसलिए साहू जी महाराज ने पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क छात्रावास

0: व्यवस्था की। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहन दिया ताकि जातिगत दीवारें टूटने लगे। किसी भी समाज की उन्नति में जाति धर्म की दीवारें रुकावट बनती हैं। उन दीवारों को तोड़े बिना समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। भारतीय समाज के पिछड़ने का कारण जातिगत दूरियां भी थी। जब तक दूरियों को संकीर्ण नहीं किया जा सकता, तब तक समाज को प्रगति की ओर नहीं ले जाया जा सकता। शाहूजी महाराज ने हमेशा इन दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया। शाहूजी महाराज को राजर्षि शाह महाराज के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक माना जाता है। छत्रपति शाहूजी महाराज को भविष्य का सम्राट कहा जा सकता था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि सामाजिक बेड़ियों को नहीं तोड़ा गया तो आने वाला भारत कभी गुलामी की बेड़ियों से अलग नहीं हो सकता। सुंदर भारत के निर्माण के लिए समाज में फैली भद्दी बेड़ियों को तोड़ना ही होगा। छत्रपति शाहूजी महाराज को राजर्षि की उपाधि इसीलिए दी गई थी क्योंकि उनका जीवन राजा के साथ साथ ऋषि जैसा भी था। उन्होंने स्वयं को राजा कम और जनता का सेवक अधिक माना। सादगी, न्याय, समानता उनके जीवन का मूल मंत्र था। शाहूजी महाराज सत्य शोधक ज्योतिराव फूले के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने हमेशा ही भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ रहे। उन्होंने मजदूरों के दर्द को भी समझा। मजदूरों के काम करने के लिए घंटे निर्धारित किए, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नियम बनाए, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की। शाहूजी महाराज ने स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया ताकि वे जागरूक बने। बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने बेहतर कदम उठाए। विधवाओं को न केवल पुनः विवाह करने की अनुमति दी बल्कि उन्हें संरक्षण भी दिया। उनके प्रति निंदनीय सोच को बदलने के उन्होंने बहुत प्रयास किए। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं को भी बढ़ावा दिया ताकि उन पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक जागरूकता के लिए लेख छपे और उन लोगों को प्रोत्साहित करे जो अपने आप को छोटा समझते थे, क्योंकि कलम ही वह शस्त्र है जिससे संपूर्ण समाज को बदला जा सकता है। उनके राजकाल में खेल, कला, संस्कृति हर चीज को बहुत बढ़ावा मिला। कोल्हापुर में उनके नाम पर अनेक स्मारक बने हुए हैं जिन्हें हम आज भी जाकर देख सकते हैं। उन्हें हमेशा ही समाज सुधार के अग्रदूतों की श्रेणी में गिना जाएगा।
1: हिंदी कार्यक्रम में प्रकाश किरण के अंतर्गत आकाशवाणी हैदराबाद से अभी आप सुन रहे थे छत्रपति साहू जी महाराज के प्रेरणादायी जीवन और उनके समाज सुधार के महान कार्यों के बारे में। इसे प्रस्तुत कर रहे थे सुनील दत्त शर्मा। श्रोताओं, जल ही जीवन का आधार है और वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार। जल संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण की रक्षा केवल हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है आज की विशेष परिचर्चा। इस परिचर्चा का विषय है हमारी धरती हमारी धरोहर। इस परिचर्चा में सहभागी हैं प्रतिभा पुलीजाला जी और इस परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सीमा कुमारी। आइए सुनते हैं परिचर्चा हमारी धरती हमारी धरोहर।
2: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम हमारी धरती हमारी धरोहर में आपका स्वागत है। धरती केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराओं, प्राकृतिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर भी है। बढ़ते पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बीच हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम अपनी धरती की रक्षा करें और इसे सुरक्षित भविष्य के लिए संजोग कर रखें। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रतिभा पुलीजाला जी, जो कि खुद ही मतलब धरती को अपनी धरोहर समझती हैं और अपने लेवल पे वो बहुत से ऐसे कार्य करती रहती हैं जिससे वन्य जीव, हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये सारी चीज जो है, जो हमारे वनारोपण है, ये सारी चीजें, प्लांटेशन है या फिर जल को बचाना है, ये सारे कार्य जो हो वो सिद्ध हो सके। प्रतिभा जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद सीमा जी, बहुत शुक्रिया आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए।
2: जी, हमारी धरती हमारी धरोहर, ये विषय जो है जब आपके मन में आता है, आपके दिमाग में आता है, तो इसके लिए आप क्या अर्थ निकालती हैं?

0: ये शुरुआत में ही आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया है।
1: जी
0: पहले तो हमें ये चीज समझना चाहिए, एक बहुत ही थिन लाइन है बिटवीन संपत्ति एंड लेगेसी।
1: बिल्कुल
0: जैसे हमें धरोहर जो है, हमें हमारे पूर्वजों से एक लेगेसी है जो हमें मिला है, ये हमारी संपत्ति नहीं है जो हम इसे जैसे चाहे वैसे हम उसे खर्च करें। हमने हमारे पूर्वज से हमें मिला है, उन्होंने हमारे लिए संभाल के रखा है, उसी तरह हमें आगे भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन को देना है। तो उसके लिए हमें बहुत माइंडफुल रहना चाहिए कि हम हमारे नेचर के साथ, हमारे प्लैनेट के साथ हम क्या कर रहे हैं, चाहे वो वायु हो, जल हो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हो, बिकॉज वी ओ इट टू देम एंड वी हैव टू गिव इट बैक टू देम। अगर हम उसमें ज्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करके बढ़ा नहीं सकते हैं, उसको अच्छा नहीं रख सकते हैं, बट खराब करने का तो हमारा कतई उसका हमारे ऊपर, हमें उस पर हक नहीं है। सो दिस इज आई डिफाइन कि हमारी धरती, हमारी धरोहर जो है वो हमारे लिए, एक जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमें उसके संभाल के रखना है और आगे बढ़ाना है।
1: जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे वर्तमान समय की। जब धरती के सामने बहुत सी ऐसे क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं कि इसकी चुनौतियां बढ़ चुकी हैं, तो आपकी नज़र में ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो अभी, मतलब ये आधुनिक जीवन में हमारी धरा जो है उसे झेल रही है?
0: हमारी जो पीढ़ी है, अभी की
1: जी
0: जनरेशन जो
1: जी
0: है, ये बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। हम लोग इतना मॉडर्नाइजेशन में आगे बढ़ चुके हैं, बिल्कुल माइंडफुल नहीं रखते हुए हमने प्लास्टिक यूज कर लिया, फैक्ट्रीज में कार्बन फुटप्रिंट को लेके हो गई, वाटर को जो मतलब वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ द सैनिटेशन आर वर्किंग एंड हाउ द वाटर्स आर गेटिंग पोल्यूटेड। तो हमारे बच्चे इतने उस चीज को लेके आज के दिन जो सफर कर रहे हैं, जो उनकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट हो रही है, विच इज ऑल्सो कॉजिंग मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस पे जो इफेक्ट आ रही है, तो उसे हम अभी सेगमेंटली उसको सबको माइंडफुल होके, हम एजुकेशन में तो SDG गोल्स हमने ऐड कर दिया है बच्चों को, और एज यू नो पॉलिसी मेकर्स और एज इंडिविजुअल्स हमको इसमें इतना चेंजेस लाने, डे टू डे में भी हमको उसमें हमारा एक लाइफस्टाइल चेंज करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उस पर अभी इमीडिएटली एकदम क्रिटिकली अटैक नहीं करेंगे, आर नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू हैव वेरी वेरी क्रिटिकल क्राइसिस ऑन दैट। सो दिस इज वेरी ग्रेव, राइट नाउ इट इज वेरी ग्रेव।
1: जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?
0: बिकॉज विदाउट प्रिजर्विंग हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को, हम लोग उनको क्रिएट नहीं कर सकेंगे ना। सो वी हैव टू, वी नीड आर फॉरेस्ट, वी नीड आर रिवर्स, वी नीड यू नो पोल्यूशन फ्री एयर, सो वी नीड ऑल दीज फॉर अवर सर्वाइवल। तो हम इसको अगर नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, हम इसके लिए एक इकोसिस्टम को जो हमने बिगाड़ दिया है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। उसके बगैर हाउ, वेयर इज द सर्वाइवल।
1: जी बिल्कुल। यानी अपने आप को, मतलब सरवाइव करने के लिए भी इसकी जरूरत अब बढ़ चुकी है। अब हम बात करेंगे जल संरक्षण की। तो जल संरक्षण में जो एक आम नागरिक है वो क्या भूमिका निभा सकता है?
0: वाटर प्रिजर्वेशन को लेके हर एक छोटा बच्चा, हर एक एज एन इंस्टीट्यूशन, हर एक इंडिविजुअल बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ माइंडफुल होने की जरूरत है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारे जितने भी मीटिंग्स होते हैं, मैं बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में भी जब लोग आते हैं, हम बात करते हैं एक तरफ कि हमें वाटर प्रिजर्व करना चाहिए, सबके बॉटल में थोड़े से पानी रह जाती है, सबके ग्लास में थोड़े से पानी रह जाती है। आई मीन हमारे माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू सेट आवर माइंड्स, नंबर वन। नंबर टू, इवन चिल्ड्रन, व्हाट दे सी इज व्हाट दे लर्न। तो यहां पे जो बेसिक, मतलब वी हैव टू डू द करेक्शंस एट अ वेरी बेसिक लेवल, अपार्ट फ्रॉम आप बोलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड हम जो वाटर्स, जो हमारे रेन वाटर इज जस्ट गेटिंग फ्लोड अवे एंड देन वी आर नॉट माइंडफुल अबाउट कि हमको रिवर्स को कैसे हम एनक्रोच कर करके हमारे रिवर्स को हम श्रिंक कर दे रहे हैं, ये तो एक लार्जर लेवल में है। बट एज एन इंडिविजुअल लेवल, हम डे टू डे वाटर कंजम्पशन के ऊपर हम इतना माइंडफुल हो सकते हैं ताकि वो वहीं पे सेव हो जाती है। दैट इज वन मेजर रिसोर्स विच वी कैन एक्चुअली एट सोर्स वी कैन करेक्ट इट।
1: जी अब हम बात करेंगे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, वो जो अपना बायोलॉजिकल डायवर्सिटी है उस पे क्या प्रभाव डाल रही है?
0: बिकॉज विदाउट प्लांट्स मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अभी मैं जहां रहती हूं, हमारा जो अपार्टमेंट है

0: 128 फैमिलीज रहते हैं, और जब हमने लिया है एंड आई डोंट सी अ सिंगल प्लांट विद इन द कंपाउंड ऑफ द कम्युनिटी, तो हम मैंने सोचा हम सर्वाइव, मतलब 428 लाइव्स, और इतने एसीस चलेंगे, इतने गैजेट्स चलेंगे, हमारा मतलब हाउ आर वी इवन गोइंग टू कंट्रीब्यूट अगर यहाँ पे एक भी झाड़ नहीं है एंड ऑल दैट. भले ही उन्होंने काट दी हो बट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट इज देर अ वे आउट that we can do some, you know, plantation here? Is there a way out that we can have? So, ye hamari thought process mein jab hum sochte hain, to immediately within a 1 year, matlab 1 year ke andar, we plan to put 100 plants and we have done that. And I have taken this initiative in the very first month of I going into the community. Jo wo abhi 100 plants, itne logon ko jab main dekhti hoon, jab itne yahan pe 2000 kareeb log rehte hain, agar 100 jhaad hum laga saken, aur 100 jhaadon ka jo, you know, environment mein uska jo oxygen circulation hota hai, and then water retention jo hoti hai. So I feel this can be done with everybody. Theek hai, hum kaat rahe hain. एक वजह के, आई मीन बिकॉज डेवलपमेंट इज ऑन अदर साइड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम हमको प्लांटेशन सोचना चाहिए. हम घरों में प्लांट्स लगा सकते हैं, हमारे बैल्कनीज में लगा सकते हैं, इंडोर लगा सकते हैं, आउटडोर लगा सकते हैं, टेरेस पे लगा सकते हैं. सो वी शुड थिंक द ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑल्सो फॉर दैट.
1: जी, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण की. ऐसा बोला जाता है कि एक प्लास्टिक जो है वो जितना नुकसान अपने वातावरण को करता है उतना कोई नहीं करता है. तो इस प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से इफेक्टिव स्टेप्स उठाए जा सकते हैं?
0: अभी तो सस्टेनेबिलिटी के लिए सीमा जी इतने सारे, यू नो, पीपल हैव ऑफ कोर्स वी आर सीइंग सम चेंजेस. जो हम 10 साल पहले, जैसे हम हमारा जो फाउंडेशन है कर्तव्य फाउंडेशन, जिसमें हम काफी इसमें इनिशिएटिव्स लिए हैं लोगों को समझाने के लिए प्लास्टिक नहीं यूज करना है, बट अभी सस्टेनेबिलिटी बॉटल्स ले रहे हैं, वन टाइम यूज थोड़ा कम हो गया है, प्लास्टिक की थिकनेस जो हम मार्केटिंग के लिए जाते हैं अब लोग कॉटन लेना शुरू किए हैं, जूट बैग्स लेना शुरू किए हैं, बट स्टिल देर इज अ परसेंटेज गैप. जो ये कर रहे हैं हार्डली द परसेंटेज मस्ट बी 20-25% एंड स्टिल 75% ऑफ पीपल आर नॉट माइंडफुल. और जो हम इतना सारा ऑर्डर करते हैं अमेजोन से, इतना सारा ये बड़े कंपनीज भी उनको जब ये पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं, दे ऑल्सो हैव टू बी माइंडफुल. सम ऑफ देम आर कमिंग आउट विद गुड सोल्यूशंस. आजकल केले के वेस्ट से कर रहे हैं, देर आर सो मेनी अदर ऑल्टरनेटिव दे आर कमिंग अप विथ. हम पहले जैसे हमारे, अगर आप पूर्वज हमारे देखोगे, हम पूरा सस्टेनेबिलिटी में ही रहते थे. स्टील टिफिन लेके जा रहे हैं, फिर धो रहे हैं, रख रहे हैं. इवन इन आवर केटरिंग वी यूज टू यूज वेसल्स. हमने जो अपना आदत बिगाड़ लिया है उसको फिर से इन एक्शन, दैट इज फिर से वो वाला सस्टेनेबल मॉडल्स को अडॉप्ट करना इज द नीड ऑफ द आवर.
1: जी, और जो कि बहुत जरूरी भी,
0: बहुत जरूरी है. जी. अभी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रह गया, इट्स बिकम लाइक अ मस्ट.
1: ट्रू. जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी है, उसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों अभी बढ़ गई है?
0: बिकॉज वी हैव लेफ्ट आवरसेल्व्स विद नो ऑप्शंस. हमने इतना, वी हैव कम टू सैचुरेशन लेवल्स. इफ यू सी द वर्ल्ड स्टैट, वहां पे कार्बन फुटप्रिंट और नेचुरल रिसोर्सेस एवरीथिंग, वी हैव कम टू अ लेवल ऑफ सैचुरेशन. सो हर लेवल में, चाहे हमारे डे टू डे अडॉप्शन में हो, चाहे पॉलिसीज में, जितने भी फ्रेंडली पॉलिसीज जो यूज हो सके, दैट वेदर इट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग लेवल में, वेदर इट इज कंस्ट्रक्शन लेवल में, वेदर इट इज फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग, टू स्टॉप यूजिंग, यू नो, यूरिया एंड थिंग्स लाइक दैट. सो एवरीवेयर इट इज नीड. सो वेयर एवर पॉसिबल वी हैव टू मेक एंड ब्रिंग दोज चेंजेस टू इंश्योर कि हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, दे आर बॉर्न वेल. अभी तो वहां तक बात हो गई है, दे हैव टू बी बॉर्न हेल्थी. पहले तो बीच में ऐसा था कि आफ्टर दे आर बॉर्न एट द एज ऑफ सर्टन दे आर, अभी तो बॉर्न इट्सेल्फ दे आर नॉट हेल्थी. उनकी इम्यूनिटी इतनी बुरी है. सो दैट इज द स्टेज वी आर इन. सो इट्स अ वेरी मच अर्जेंट नाउ.
1: जी, पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है?
0: युवा बहुत कुछ कर सकते हैं
1: जी
0: और अभी हम देख भी रहे हैं, बहुत युवा आजकल मैं देखती हूँ सोशल इम्पैक्ट को लेके दे आर गोइंग इन एंड अराउंड, उनके लेक्स जो होते हैं, उनके जो पॉन्ड्स होते हैं, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग इट क्लीन, दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड दे कैन प्रैक्टिस बाय देमसेल्व्स अडॉप्टिंग वेरी सिंपल थिंग्स लाइक अगेन व्हेन डे टू डे अगर दे कैन बी माइंडफुल ऑफ नॉट बाइंग क्लोथ्स विच इज नॉट नीडेड अननेसेसरी.

0: బింజ్ బయింగ్ ఆన్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ దే కెన్ థింక్ ట్వైస్ దే కెన్ ఆల్వేస్ థింక్ ట్వైస్ కి మే ఏ జో లే రా హూ ఏ జో మే ఖా రా హూ ఏ జో మే కర్ రా హూ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ for my because usko abhi rehna hai usko khud ko bhi abhi agle 50 60 saal rehna hai if they are at the age of 20 on an average anybody has to survive another 40-60 so those thoughts if they have on every time they give a second thought whether it is saving water you know buying jaise hi humko choti si cheez batati hu hum log jaise abhi ghar mein hum log water filters use karte hain aaj bhi ye common ho gaya hai okay to जब हमने हमारे कम्युनिटी में झाड़ लगाने की बात हो रही थी तो मेरे से सवाल पूछा गया मैडम झाड़ तो लगा रहे हैं हमारे पास पानी की स्केयरसिटी है पानी हम टैंकर से ले रहे हैं अब झाड़ों को कहां से लाए तो मैंने किया सर्वे और मगर आरओ लगा हुआ था और मैंने देखा कि अंडरग्राउंड में एक हमारी सम्प जिसको बोलते हैं जो आरओ से आ रही थी बिल्डिंग की वो ओवरफ्लो हो रहा था तो मैंने कहा ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है इसको पंप लगाओ ये झाड़ों को डाइवर्ट करो ये तो ड्रेन में चले जा रहा है मैडम ये तो आरओ का है मैंने झाड़ों को हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस एंड सिंस देन एंड टिल टुडे दैट आरओ इज गेटिंग सर्कुलेटेड फॉर द प्लांट्स एंड घरों में भी सब लोग अपना प्लांट्स लगाते हैं अब मेरे घर में जब आते हैं लोग इतने झाड़ देखते हैं उनको कॉमनली लगता है कि 5-6 बाल्टी तो रोज पानी को चले जा रहा है मैं हमारे मेड्स हो या हम हो वो आरओ वाटर को हमने एक वाटर उसके नीचे मैंने जो पाइप आउटलेट रहती है उसमें मैंने एक बड़ा सा टब लगा दिया है वो दिन में 4 बाल्टी थ्रो करता है व्हेन वी फिल अवर वाटर बॉटल्स द सेम वाटर गोज टू माय प्लांट्स सो दीज आर व्हाट यू डू इम्बाइब इन आवर ओन हाउसेस सबके बाथरूम्स में लगे हुए हैं आरओ फिल्टर्स वाटर कहां जा रहा है एंड यू कैन पुट सो मेनी प्लांट्स यू कैन वॉश योर टॉयलेट्स विद दैट योर अंडरस्टैंडिंग
1: जी जी
0: सो व्हाई आर वी यूजिंग द फ्रेश वाटर टू वॉश द टॉयलेट्स So these are some things when you do, the youth also can think and, you know, so much of water can be saved and done it there. So
1: और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है आपका और हमारे जो भी श्रोता इस बात को सुन रहे हैं वो प्रेरित हो रहे होंगे क्योंकि ये छोटे बदलाव जो हैं दैनिक जीवन में वही बड़ा चेंज लेके आते हैं जी आप कुछ जोड़ रही थी प्रतिभा जी
0: मैंने कहा दिस इज आई मीन एवरी हाउस जस्ट इमेजिन 450 हाउसेस आर थ्रोइंग दैट वाटर And then you're using fresh water to wash your toilets. मैं देखती हूँ हमारे बाजू में झोपड़पट्टी है वहां बेचारों के पास नहाने के लिए एक बाल्टी पानी नहीं है जो हमारे घरों में काम करने आते हैं और हम यहाँ पे 4 बाल्टी फेंक रहे हैं टू क्लीन अवर टॉयलेट सबके घर में 4 टॉयलेट्स होते हैं सो दिस इज मतलब वेयर इज द इक्वेशन
1: जी बिल्कुल सही बात है अब हम बात करेंगे जो अपनी भारतीय पारंपरिक जीवन शैली रही है वो किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है
0: हमारा आई थिंक सो जितना हमारा इंडियन कल्चर और इंडियन लेगेसी ऑन आवर सस्टेनेबिलिटी है वो वर्ल्ड के लिए आज एक बेंचमार्क बन गया है वो आज एक रोल मॉडल बन गए हैं हम बट सिर्फ कहीं ना कहीं हम बीच में उसमें चुक गए हैं टू ब्रिंग इन दैट सस्टेनेबिलिटी हम टेक फॉरवर्ड करने के लिए चाहे वो हमारे खान पीन में हो चाहे डे टू डे एक्टिविटी में हो वो चीज को वो सस्टेनेबिलिटी जैसे हम जैसे मैंने बताया घरों में से हमारे जितने भी आप ड्रेन्स भी अगर देखते थे आप पूरा झाड़ों में पानी चले जाता था दैट सेम थिंग इज टू गिव अस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल दैट स्टफ अगर हम वेट वेस्ट जो होता था हमारे किचन से जो निकल रही है हम जाके हम ये झाड़ों में डाल देते थे तो वो नेचुरली ऑर्गेनिकली उसका मैन्योर बन जाता था हमको अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ता था डस्टबिन नहीं होते थे बाहर इजंट इट हम आराम से थैली लेके जाते थे और थैलियां ला लेते थे फिर थैली धो देते थे एंड देन फिर हम उसको रीयूज करते थे इतने सारा हमारा जो सस्टेनेबल मॉडल है इससे अच्छी कोई मतलब इवन हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी आते थे दे आर ऑल बॉट आउट फ्रॉम दिस ऑर्गेनिक वे ओनली हमारे फार्म्स में भी वो जो मैन्योर निकलती थी उसी को फिर से मैन्योर के जैसा यूज किया जाता था काउडंग को यूज किया जाता था सो दीज वेर ऑल समथिंग विच वॉज यू नो वेरी नेचुरली मतलब हम डिफॉल्ट ही करते थे उसको जिससे गोबर गैस भी बनती थी तभी हमारे फार्मर्स इतना उसी पे पूरी रिसाइकल हो जाती थी सो दीज आर अगर हम ऑब्जर्व करें और थोड़ा सा हम बैक जाएं सो हमारी जो इतनी रिच लेगेसी है तो वो लेगेसी को बस हमको फिर से हमारे हमको भी यूज करना है ताकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन उसको देखे और वो लोग भी उसको लेके जाने के लिए इट विल बी रिवाइव्ड अगेन वी हैव टू डू दैट रिवाइवल अगेन
1: जी चलते चलते आपसे दो सवाल पहला तो ये कि जो विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए
0: उनको एक तो रेगुलर पैटर्न्स करना चाहिए एक तो अवेयरनेस की तो इम्पोर्टेंट है बट अवेयर

0: अवेयरनेस के साथ उनको इमर्सिव बनाना चाहिए, बिकॉज सिर्फ अवेयरनेस वो एक वन ऑफ द लेक्चर्स हो जाता है, वो उनको व्हाट कैन बी डन फ्रॉम द डेली, फ्रॉम द टाइम दे कम इन एंड दे गो आउट, वहीं पे वो क्या है जो उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे मॉडल्स उनको पिक करना चाहिए. अगर मैं सोचती हूँ, एक हमारा नेक्स्ट होता था कि इन स्कूल्स में जैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम जाते थे, इमीडिएटली हमारा वो, अगर मैं टेंथ में चले गई, नाइन्थ वाला बच्चा आके हमारे से टेक्स्ट बुक्स ले लेता.
1: जी बिल्कुल. हाँ.
0: अब होता है?
1: होता होगा, मेरे ख्याल से छोटे लेवल पे होता होगा, लेकिन होता होगा. और मैं अभी तो किताबें ही बदल जा रही हैं स्कूलों की, तो हो सकता है पॉसिबल ना हो. जी बिल्कुल.
0: सो मच ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल इज गेटिंग वेस्टेड एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये हम जो खाने का जो उनको बताना चाहिए कि हाउ होम मेड फूड कैन बी ईटन इंस्टेड ऑफ ऑलवेज हम परचेज करके जो खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, दिस ऑल व्हाट कैन बी डन एट अ स्कूल लेवल इफ दैट, वो एक सेट मॉडल.

0: तो ये हम जो खाने का जो उनको बताना चाहिए कि हाउ होममेड फूड कैन बी ईटन इंस्टेड ऑफ ऑलवेज हम परचेज करके जो खाते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: पैकेज्ड फूड खाते हैं. दीज ऑल व्हाट कैन बी डन एट अ स्कूल लेवल इफ दैट वो एक सेट मॉडल दिखाया जाएगा उनको एंड मेक श्योर दैट दे आर अडॉप्टिंग देम इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रीचिंग देम एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस. इफ वंस दे स्टार्ट अडॉप्टिंग एंड दैट बिकम्स देयर रूटीन, तो आई थिंक सो दैट्स द बेस्ट वे टू इवन गेट देम इन टू द
1: जी।
0: साइकिल.
1: अब चलते चलते आम नागरिक अपने दैनिक जीवन में क्या आदतें अपनाएं जो धरती को सुरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं?
0: आम नागरिक जैसे मैं समझती हूँ मेरा एक कर्तव्य है कि मैं यहाँ पे आज अच्छे से रह रही हूँ, हेल्दी रह रही हूँ, तो मैंने अपना एक फाउंडेशन मेरे कर्तव्य पूरा करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है. सो सबके सबका भी अपना अपना एक कर्तव्य है हमारे धरती के लिए. हम इस धरोहर को अच्छे से, जैसा इतना इंडिया इज नोन फॉर इज रिच कल्चर इन एवरी फॉर्म, तो हम उसको हमारा कर्तव्य के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम माई मॉर्निंग टिल नाइट हम हर एक स्टेप में क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज एयर वाटर एंड अदर रिसोर्सेस, सब चीज को हमको यूज करना है एंड दैट हैज टू बी विद एवरीबडी. दैट इज नॉट एनी
1: जी बिल्कुल
0: ऑप्शन फॉर अस, हमको
1: जी
0: करना ही चाहिए.
1: जी तो श्रोताओं, आज की बातचीत से यह स्पष्ट है कि पृथ्वी की सुरक्षा केवल सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है। यदि हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने और अपने व्यवहार में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाएं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध धरती को छोड़ सकते हैं। प्रतिभा जी, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आकाशवाणी हैदराबाद को दिया और अपने विचारों और महत्वपूर्ण जानकारियों से हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया.
2: हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी हैदराबाद से अभी आप सुन रहे थे एक परिचर्चा जिसका विषय था हमारी धरती हमारी धरोहर। इस परिचर्चा में सहभागी थी प्रतिभा पुलीजाला और इस परिचर्चा का संचालन कर रही थी सीमा कुमारी। श्रोताओं, यदि हम जल की प्रत्येक बूंद का महत्व समझें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने का संकल्प लें, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, हरित और समृद्ध पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं कुछ मधुर संगीत। तो प्रस्तुत है फिल्म अंदाज से किशोर कुमार की सुमधुर आवाज में एक सदाबहार गीत।

0: మా అమ్మాయి పెయింటింగ్స్ బాగున్నాయా ఆ పెయింటింగ్స్ అక్కడ ఎగ్జిబిషన్ పెడుతుంటే తన ఫ్రెండే మళ్ళా ఇనాగ్రేషన్ చేయాలి. ఇరాన్ కాన్సులేట్ జనరల్ ఉంటారు కదా, మా ఫ్రెండే తను అని పిలుచుకొని ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా పైకి తీసుకొని రావాలి హాల్కి గాని, తను పైనే ఉన్నారు, నేను నీ వెంట ఉన్నాను. ఆ ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఎంత ఇన్స్పైరింగ్ అది, నా టేబుల్ మీద నేను పెట్టుకుంటాను అది, తను ఇన్స్పైర్ నేను పైకి మై ఫాదర్ అని చెప్తున్నా, నేను ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మై ఫాదర్ ఇరాన్ జనరల్. సో ఇలా ఎంకరేజ్ చేశాను అంటే బాగా క్రియేటివిటీని కానీ ఇవన్నీ మర్చిపోలేని మదర్ స్మృతుల జీవితం.
1: వనితా లోకం కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఇప్పుడు వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ నుండి రిలే.
2: ఖబరుం కే సాత్ మే కలీమ్ అహ్మద్. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरूने मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुंदर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है. वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया. आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, नीस कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तहत तशक्कुर का इजहार किया. विक्टोरिया में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमेनी के साथ दो तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जा सके. सरकार ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो सफर से मुतालिक जरूरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं. मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है. अमरीका और ईरान की अफवाज ने एक दूसरे के खिलाफ फिर से हमले किए हैं और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा. अब खबरें तफसील से. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि भारत में बनाए गए C-295 तर्ज के हवाई जहाज की पहली परवाज मुकम्मल होने के साथ ही भारत ने जून के महीने में एविएशन के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल की है. आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम ने बताया कि इस तरह के 40 हवाई जहाज भारत में तैयार किए जा रहे हैं.
3: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
2: जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत ने इस महीने मुल्क की सिक्योरिटी और खुद किफालत से वाबस्ता कामयाबी हासिल की है. वजीर आजम ने हाल ही में कोलकाता में बहरिया की एक तकरीब में शिरकत की थी जिसमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया. वजीर आजम ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि इन बहरी जहाजों के डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज अंदरून मुल्क तैयार की गई है. वजीर आजम ने कहा कि जून के महीने में ही दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भी मुल्क में ही तैयार किए गए तवील दूरी के जमीनी हमले से मुतालिक क्रूज मिजाइल की कामयाब आजमाइश की. इसे DRDO की तजर्बागाहों और भारतीय सनत के साझेदार इदारों ने मिलकर तैयार किया. जनाब मोदी ने कहा कि भारत समुंदर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है. वजीर आजम ने योग के बैन अलाक्वामी दिन का भी तस्करा किया जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की कोशिशों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया. जनाब मोदी ने अहमदाबाद में मुनक़िदा आलमी योग आसन चैम्पियनशिप का भी जिक्र किया जहां भारत ने सोने के 102 तमगों समेत मजमूई तौर पर 114 तमगे जीते.
3: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई. इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है. भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा.
2: وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ جناب

0: تیاری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سمندر سے لے کر آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہوائی جہاز C-295 کی پہلی پرواز مکمل ہونے کو اجاگر کیا۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے اور غیر ملکی سفر کرنے سے گریز کرنے، نیز کار پولنگ کو فروغ دینے کی اپنی حالیہ اپیل کے سلسلے میں سرگرمی کے ساتھ حمایت کرنے پر ملک کے شہریوں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ اور خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج لندن میں گروپ اے کے آخری میچ میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह

0: दिया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nanded, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री

0: जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महास

0: सागर ने भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भाषा के माध्यम से भले हो, लेकिन उसके प्रसार के जरिए ही उसका विकास संभव होता है। विश्व के सुदूर कोनों तक वह अनुवाद के माध्यम से ही पहुंच सकता है। इसलिए आज का युग अनुवाद का युग कहा जाता है। तो आइए अनुवाद और उसके सैद्धांतिकी की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अनुवाद सिद्धांत वस्तुतः अनुवाद के विभिन्न मुद्दों से संबंधित ज्ञानात्मक सूचनाओं का एक निकाय है, जिससे अनुवाद को एक प्रक्रिया अर्थात अनुवाद कार्य, एक निष्पत्ति अर्थात अनुदित पाठ तथा एक संबंध अर्थात समतुल्यता के रूप में समझने में सहायता मिलती है। इसके लिए इस समय अनुवाद विद्या, ट्रांसलेशन स्टडीज, अनुवाद विज्ञान, साइंस ऑफ ट्रांसलेशन और अनुवादिकी, ट्रांसलेटोलॉजी शब्द भी प्रचलित हैं। इस प्रकार अनुवाद प्रक्रिया अनुदित पाठ के रूप में उसकी निष्पत्ति और अनुदित पाठ से उसके संबंध की समग्र इकाई के रूप में जानकारी ही अनुवाद सिद्धांत है। अपने विकास की वर्तमान अवस्था में यह बहु विद्यापरक अनुशासन बन गया है, क्योंकि आज अनुवाद एक स्वतंत्र विषय एवं महत्वपूर्ण विधा के रूप में न केवल अपना विशेष स्थान बना चुका है, बल्कि उसका व्यवस्थित ढंग से उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। विश्व सभ्यता के विकास में अनुवाद की सराहनीय भूमिका रही है। यह भूमिका साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र तक ही नहीं, अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य कई संदर्भों में भी सराहनीय रही है, क्योंकि अनुवाद ही वह अकेला माध्यम है जिसकी सहायता से विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों, धर्मों एवं सामाजिक स्तरों पर देश विदेशों में संवाद स्थापित हो पाता है। तो आइए पहले जानते हैं अनुवाद क्या है। एक भाषा की किसी सामग्री का दूसरी भाषा में रूपांतरण ही अनुवाद है। इस तरह अनुवाद का कार्य है एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, किंतु यह व्यक्त करना सरल कार्य नहीं है। होता यह कि हर भाषा विशिष्ट परिवेश में पनपती है, अतः उसकी अपनी अनेक ध्वन्यात्मक, शाब्दिक, रूपात्मक, वाक्यात्मक, आर्थिक, मुहावरे विषयक तथा लोकोक्ति विषयक आदि निजी विशेषताएं होती हैं, जो अन्य भाषाओं से कुछ या काफी भिन्न भी होती हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि एक भाषा की किसी अभिव्यक्ति के पूर्णतः समान अभिव्यक्ति शब्दतः और अर्थतः दूसरी भाषा में हो। पूर्णतः समान अभिव्यक्ति से आशय यह है कि स्रोत भाषा की रचना या सामग्री को सुन या पढ़कर स्रोत भाषा भाषी जो अर्थ ग्रहण करते हैं, ठीक वही अर्थ अनुवाद को सुन या पढ़कर लक्ष्य भाषा भाषी भी ग्रहण करें। ऐसा सर्वदा इसलिए नहीं हो पाता कि आम तौर पर स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति से जो अर्थ होता है वह लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति से व्यक्त होने वाले अर्थ की तुलना में या तो विस्तृत होता है या संकुचित होता है या कुछ भिन्न होता है। कारण यह कि दोनों भाषाओं की अभिव्यक्ति इकाइयां समान नहीं होती या हो भी नहीं सकती। अनुवाद में अभिव्यक्ति के स्तर पर समानता लाई जाती है। समानता की यह निकटता जितनी अधिक होती है अनुवाद उतना ही अच्छा और सफल होता है। इन तथ्यों के आधार पर अनुवाद की परिभाषा बनाएंगे तो वह इस प्रकार होगी। एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद है। इस परिभाषा में तीन बातें ध्यान देने की है। पहली बात यह कि अनुवाद का मूल उद्देश्य है स्रोत भाषा की रचना के भाव या विचार लक्ष्य भाषा में यथासंभव अपने मूल रूप में लाना। दूसरी बात यह कि अनुवाद के लिए स्रोत भाषा में भावों या विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग है उसके यथासंभव समान या अधिक से अधिक समान अभिव्यक्ति की खोज लक्ष्य भाषा में होनी चाहिए। तीसरी बात यह कि लक्ष्य भाषा में जिस अभिव्यक्ति की खोज हो वह लक्ष्य भाषा में सहज हो, अर्थात उसके सहज प्रवाह या प्रयोग में स्रोत भाषा की छाया न हो। इस तरह हमने जाना कि अनुवाद क्या है। अब हम अनुवाद के प्रकार जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो अनुवाद के कई भेद या प्रकार हो सकते हैं। इन भेदों या प्रकारों के मुख्य आधार चार हैं: गद्यत्व,
पद्धति के आधार

आधार पर, साहित्यिक विधा के आधार पर, अनुदित सामग्री के विषय के आधार पर और अनुवाद की प्रकृति के आधार पर। इनमें प्रथम तीन अपेक्षाकृत बाह्य आधार हैं और अंतिम आंतरिक आधार। इन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो हम पाते हैं कि अनुवाद के गद्य पद्य होने के आधार पर इसके तीन भेद हैं, अथवा वे हैं गद्यानुवाद, पद्यानुवाद और मुक्त छंद अनुवाद। साहित्यिक विधा के आधार पर कई भेद हो सकते हैं, किंतु मुख्य भेद है काव्यानुवाद, नाटकानुवाद एवं कथानुवाद। विषय के आधार पर अनुवाद के अनेक भेद किए जा सकते हैं, जैसे सरकारी रिकॉर्डों का अनुवाद, पत्रकारिता से संबद्ध अनुवाद, वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद, धार्मिक साहित्य का अनुवाद आदि। अनुवाद की प्रकृति के आधार पर भी अनुवाद के कई भेद किए जा सकते हैं, किंतु मूलतः इस प्रकार के दो भेद हो सकते हैं। अतः वे भेद हैं मूलनिष्ठ अनुवाद और मूल मुक्त अनुवाद। अब तक हमने अनुवाद के प्रकारों को जानने और समझने का प्रयास किया है। अब हम जानेंगे अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में। किसी भी अनुवादक को इस प्रक्रिया का पूरा ज्ञान होना अनिवार्य है, जिसके अभाव में उस अनुवादक द्वारा किया गया अनुवाद सफल अनुवाद नहीं होगा। अनुवाद करने की प्रक्रिया के नोएडा आदि विद्वानों ने तीन चरण माने हैं। वे चरण हैं पाठ विश्लेषण, अंतरण, पुनर्गठन। वहीं कुछ रूसी विचारकों ने चार चरण माने हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार इसके पांच चरण बताए गए हैं। हम इन पांचों चरणों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः अनुवाद करते समय अनुवादक को इन पांचों चरणों से गुजरना पड़ता है। इनमें पहला चरण है पाठ पठन। इस चरण में जिस सामग्री का अनुवाद किया जाता है उसको सर्वप्रथम पढ़ा जाता है। यह पाठ पठन दो दृष्टियों से किया जाता है, भाषिक अर्थ की दृष्टि से तथा वैषयिक अर्थ की दृष्टि से। पाठ पठन में हो सकता है कि कहीं भाषा कठिन हो और उसे समझने की आवश्यकता हो। इसके लिए उस भाषा के अच्छे ज्ञानकार या कोश आदि की सहायता ली जा सकती है। अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा चरण है पाठ विश्लेषण। इस चरण में अनुवाद की दृष्टि से पाठ का विश्लेषण करते हैं। इस विश्लेषण में मुख्य बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि कहाँ शब्द का अनुवाद करना है, कहाँ पदबंध का, कहाँ उपवाक्य का, कहाँ वाक्य का और कहाँ एक वाक्य को एकाधिक वाक्यों में तोड़कर अनुवाद करना है तथा कहाँ एकाधिक वाक्य को एक वाक्य में मिलाकर अनुवाद करना है। अनुवाद प्रक्रिया का तीसरा चरण है भाषांतरण। दूसरे चरण के पाठ विश्लेषण के आधार पर स्रोत भाषा की इकाइयों का लक्ष्य भाषा की इकाइयों में अंतरण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पाठ द्वारा संवाहित अर्थ को अनुवादक द्वारा ग्रहण कर उसे लक्ष्य भाषा में ले आना अंतरण के अंतर्गत आने वाली क्रिया है। अनुवाद प्रक्रिया का चौथा चरण है समायोजन। यहाँ इस चरण में जिस पाठ का अंतरण हुआ है उसका लक्ष्य भाषा की दृष्टि से समायोजन करते हैं। इस समायोजन में अनुवादक का ध्यान तीन बातों पर जाना चाहिए। एक यह कि भाषा में सहज प्रवाह हो, दूसरा यह कि अनुदित भाषा पर स्रोत भाषा का प्रभाव या छाया न हो, तीसरा यह कि अर्थ स्पष्ट हो। ध्यान रहे कि यह अर्थ की स्पष्टता दो प्रकार की हो, भाषिक अर्थ के स्तर पर एवं वैषयिक अर्थ के स्तर पर। अनुवाद प्रक्रिया का पांचवा या अंतिम चरण है मूल से तुलना। अनुवादक को चौथे चरण के बाद अपने कार्य को संपन्न या पूरा नहीं मानना चाहिए। उसे अनुदित पाठ की तुलना मूल से एक बार अवश्य कर लेनी चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अनुवाद मूल से न कम कह रहा हो और न अधिक कह रहा हो और न कुछ हटकर कह रहा हो। तो हमने जाना कि अनुवाद एक विशिष्ट प्रकार का भाषा व्यवहार है। यहाँ व्यवहार से तात्पर्य कार्य से है। विशिष्ट होने के कारण यह जटिल कार्य है और इस रूप में सैद्धांतिक स्तर पर इसके अनेक विचारणीय पक्ष हैं। अतः वे पक्ष हैं अनुवाद करने वाला, अनुवादक अनुवाद क्यों करता है, अनुवाद में वह किन साधनों को काम में लाता है, अनुवादक को अपने कार्य के निष्पादन में किन युक्तियों का आश्रय लेना होता है, वे कौन कौन से बिंदु हैं जिनका अनुवादक भाषांतरण नहीं कर पाता, वे कौन कौन से लक्ष्य है जिन्हें पाने के लिए अनुवादक प्रयत्नशील रहता है, वे कौन कौन से तथ्य हैं जिनकी जानकारी से अनुवादक को अनुवाद कार्य में सफलता मिलती है, और अंत में अनुवाद कार्य का एक नमूना। स्पष्ट है कि अनुवाद कार्य का निष्पादक अनुवादक है और अनुवाद कार्य संबंधी विमर्श का केंद्र बिंदु भी
अनुवादक ही।

0: ही है। अनुवाद कार्य की इन जटिलताओं से उभरने अनुवाद की सैद्धांतिकी सहायक होती है और हम इस अनुवाद सैद्धांतिकी की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद सिद्धांत का सामयिक संदर्भ देखें तो हम पाते हैं कि इस सिद्धांत की मूल विशेषता है इसकी बहुपक्षीयता। यहाँ पर यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि एक ओर मानव अनुवाद तथा मशीन अनुवाद तथा दूसरी ओर लिखित अनुवाद और मौखिक अनुवाद के व्यवहारिक महत्व के कारण इसके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में अब चिंतन आरंभ हो गया है, जबकि मानवकृत लिखित माध्यम के अनुवाद की ही परिमाणगत तथा गुणात्मक प्रधानता है तथा इनसे संबंधित सैद्धांतिक चिंतन के मुद्दे विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। अनुवाद कार्य की परंपरा को देखने से यह स्पष्ट है कि अनुवाद सिद्धांत संबंधी चिंतन साहित्यिक कृतियों को लेकर ही अधिक हुआ है। यह स्थिति संगत भी है। विगत युग में साहित्यिक कृतियों को ही अनुवाद के लिए चुना जाता था। अब भी साहित्यिक कृतियों के अनुवाद बड़े परिमाण में होते हैं। बदलते परिदृश्य में परिस्थितियों के अनुरोध से अब साहित्येतर लेखन का अनुवाद भी बड़ी मात्रा में होने लगा है। अनुवाद सिद्धांत का एक विकासमान आयाम है अनुसंधान की प्रवृत्ति। अनुवाद की बहुविद्यापरक प्रवृत्ति के कारण विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जैसे भाषा विज्ञानी, समाजशास्त्री, मनोविज्ञानी, शिक्षाविद, सूचना सिद्धांत विशेषज्ञ परस्पर सहयोग के साथ अनुवाद के सैद्धांतिक मुद्दों पर शोध कार्य में रुचि ले रहे हैं। मशीन अनुवाद तथा मौखिक अनुवाद के क्षेत्र में नई नई संभावनाएं सामने आ रही है जिन्होंने इस क्षेत्र में अनुवाद अनुसंधान को गति प्रदान की है। मानव अनुवाद तथा लिखित अनुवाद के परंपरागत क्षेत्रों पर भी आज अध्ययन की नई दृष्टियों ने विशेषज्ञों को नए ढंग से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। इन सब प्रवृत्तियों से अनुवाद सिद्धांत को अप्रतिष्ठा का पद मिल गया है और इसे सैद्धांतिक शोध के एक उपयुक्त क्षेत्र के रूप में स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
1: अभी तक आपने अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग के पाठ हिंदी में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर अविनाश के प्रस्तुत किए थे।
2: एजुकेशन एट योर डोरस्टेप, दैट वाज़ अ प्रोग्राम ऑफ लर्निंग फॉर एवरीवन, ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। सो लिसनर्स, इट्स बाय टिल आवर नेक्स्ट रेडियो लेसन।

0: को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती हैं। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मग़रिबी एशिया में पैदा होने वाले बहरान के पेश नज़र उन्होंने आवाम से कुछ अरसे के लिए सोने की खरीदारी मौक़िर करने, गैर मुल्की सयाह से गुरेज करने और किसानों से कीमियाई खादों के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने मसर्रत का इजहार किया कि आवाम ने उनकी तजावीज पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि योगा सिर्फ शख्सी सेहत ही नहीं बल्कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने का बेहतरीन ज़रिया है। उन्होंने कहा कि अगर योगा को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए तो इसके बेशुमार मुस्बित नतायज हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने याद दिलाया कि 21 जून को बैनुल अक़वामी योम योगा के मौके पर दुनिया के 200 ममालिक में 2500 मुकामात पर तकारीब मुनक़िद हुई। उन्होंने ये भी बताया कि अहमदाबाद में मुनक़िदा वर्ल्ड योगा सन चैम्पियनशिप में भारत ने पहली पोजीशन हासिल की।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की कि वो मरकजी हुकूमत की बीमा स्कीमों से फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और 15 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जरिए गरीब आवाम को माली तहफ़ फराहम किया जा रहा है, लिहाजा हर शख्स को इन स्कीमों से मुस्तफीद होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पानी का तहफ़ मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम है और समाज के हर फर्द में पानी की बचत के बारे में शऊर बेदारी पैदा करनी चाहिए। उन्होंने बारिश के मौसम में हर बूंद को महफूज बनाने की अपील करते हुए कहा कि बारिश के पानी को महफूज करें, ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर में इजाफा करें।
0: जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि देहातों को साफ सुथरा रखने से मुल्क की सेहत और मईशत दोनों मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि अगर देही इलाकों में जमा होने वाले कचरे को इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त के साथ साफ किया जाए तो स्वच्छ भारत का ख्वाब हकीकत बन सकता है। इस मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश के ज़िले राजगढ़ के बयारवा इलाके की खवातीन की जानिब से प्लास्टिक के फजले से ईको ब्रिक्स तैयार करने के इकदाम की सताइश की।
0: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा।
1: रियासत भर में पल्स पोलियो मुहिम जारी है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए रियासती महकमे सेहत ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दीगर अहम मकामात पर खसूसी पोलियो मराकज़ कायम किए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वालिदीन से अपील की है कि अपने बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए हर 5 साल से कम उम्र बच्चे को लाजमन पोलियो की खुराक दिलाएं। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि हुकूमत का मकसद पोलियो से पाक तेलंगाना की तश्कील है। उन्होंने आज हैदराबाद के बोराबंडा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रियासती वज़रा पुन्नम प्रभाकर, अडलूरी लक्ष्मण, रुकने पार्लियामेंट अनिल और रुकने असेंबली नवीन के हमरा पल्स पोलियो प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज जिले नलगुंडा के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने कनगल में तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये की लागत से हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल के तहत सरकारी और खानगी शराकतदारी से तामीर की जाने वाली सड़कों के मनसूबे का संग बुनियाद रखा और यादगार पायलान की नकाबकुशाई अंजाम दी। इस मनसूबे का बुनियादी मकसद रियासत भर में मौजूद सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन सड़कों में तब्दील करना है। इसके तहत 451 सड़कों को मजमू तौर पर 6,092 किलोमीटर तक तरक्की देना है। दौरे के मौके पर वज़ीर आला ने पीने के पानी की फराहमी की।

स्कीम का भी अफ्ताह किया। आज शाम वज़ीर-ए-आला नलगुंडा डिग्री कॉलेज के मैदान में मुनक़िद होने वाले एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत हर तरह से किसानों के साथ है और उनकी फलाह बहबूद के लिए मुसलसिल संजीदगी से इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने इस महीने की 30 तारीख को खम्मम ज़िले के चिंताकानी मंडल के जगन्नाथपुरम में मुनक़िद शुदनी रैतु आशीर्वाद सभा के इंतजाम का मुत्तहिदा ज़िले के अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। इस जलसे आम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा बाज़ वुज़रा और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में गुज़श्त रोज़ हुई बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आज और कल भी आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, मुलुगु और जयशंकर भूपालपल्ली अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। रियासत भर में सरकारी मुलाजमीन और वजीफ़याब अफराद के लिए हेल्थ स्कीम का 15 जुलाई से आगाज़ होगा। इस स्कीम पर अमलावरी से मुतालिक अंदरून एक हफ्ता जाम रहनुमाना खतूत जारी किए जाएंगे। मुलाजमीन हेल्थ केयर ट्रस्ट का पहला इजलास हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव की क्यादत में सेक्रेटरीट में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुलाजमीन और वजीफ़याब अफराद के लिए मयारी तिब्बी खिदमात को यकीनी बनाने जाम हिकमत अमली को क़तियत दे रही है और इस पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर भारत के जज्बे के तहत तमाम शोबों में खुद इन्हसारी की जानिब तेजी से पेशरफ्त करते हुए शानदार कामयाबियां हासिल कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, पानी का तहफ्फुज़ मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है और हर शहरी में पानी की बचत और इसके मौसर इस्तेमाल के बारे में शऊर बेदारी पैदा करनी चाहिए। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि किसानों के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है और उनकी खुशहाली के लिए पूरी दयानतदारी के साथ मुसलसिल खिदमात अंजाम दी जा रही हैं और रियासत भर में आज से पल्स पोलियो प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। इसी के साथ खबरें खत्म हुईं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armani and the people of Seychelles for honoring me with the Guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिन

0: ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today stated that climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. In his special address to the National Assembly of Seychelles, Prime Minister said this is the essence of climate justice. He emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities.
2: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly.
1: Mr. Modi said Seychelles occupies a special place in India's vision for the Indian Ocean and that conviction is stronger than ever. He said the Indian Ocean does not separate India and Seychelles but connects the two countries. He addressed that it will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation.
2: Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
1: Prime Minister said it is a special honor to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked President and the people of Seychelles for honoring him with the Seychelles' highest distinction, the Guardian of the Blue Horizon, earlier in the day. Union Ministers Amit Shah, S. Jayashankar, Rajnath Singh, Piyush Goyal, Manohar Lal and Jitendra Singh congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Prime Minister Modi has said that the power of public participation in nation building is one of

0: India's greatest strengths. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today, Mr. Modi said this spirit was once again evident after he appealed to citizens to adopt certain measures in view of the prevailing warlike situation in West Asia. Mr. Modi had urged people to avoid buying gold, postpone non-essential foreign travel and use carpooling for some time.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and

0: और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारंभं विदधाति।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षं न्यगादीत् यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्रीमोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना सम्बन्धि कार्यक्रमं सम्बोधितवान्, यत्र आईएनएस दुनागिरि, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
0: कोलकाता में आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामी गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्यरूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्, सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पिभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्तिनिर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मयमूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिः पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्ण क्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ। सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च स्वस्व मनोगतं विनिमयीकृतवन्तौ। तस्मात् पूर्वं सेशेल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्ड्स ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमन्त्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स

0: के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आज

0: जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, 1 पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1,000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य

0: हैदराबाद ब्रदर्स और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक अकादमी में कई प्रदर्शन दिया।
1: श्री एन एस कल्याण रामन हैज अकंपनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद सिस्टर्स एंड हैदराबाद ब्रदर्स। He has performed in prestigious sabhas across the country, including Madras Music Academy.
0: Sri N.S. Kalyanaraman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne Chennai aur Vijayawada Akashwani kendra mein 36 varsh ki visisht seva pradan kiya. Aapne Akashwani aur Doordarshan ke kai rashtriya sangeet karyakram mein bhag liya. Aap Kanchi Kamakoti Peetham ka aasthan vidwan raha aur आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
1: He is a top grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashwani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetham and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
2: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याणारामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
1: Tonight, श्री एन एस कल्याणारामन begins his लय विन्यासम on मृदंगम with मिश्र जाति झंपे तालम।

0: आप रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं।

0: श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath aarthik samruddhi bhi badhe, jahan hamari saajhedari aakar nahi aapasi samman aur vishwas par aadharit ho aur jahan हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed